भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

गुणविभव ऐश्वर्य शीलाद्यनवधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणमहं प्रपद्ये। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु

वर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनय मधुतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाग जाए अमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय। श्री राम जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हरा।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

श्री गोविंद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री भगवान अपने अति जिज्ञासु भक्त को आध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधिभूत व अधियज्ञ के बारे में समझाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन प्रयाण के समय मनुष्य का जैसा भाव होता है उसे वैसी ही गति मिलती है। अतः इस दुख आलय

श्री कृष्ण इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की दिवस एवं रात्रि के आधार पर कल्प की आयु को स्पष्ट करते हुए दक्षिणायन उत्तरायण शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों पर आधारित जग प्रयाण के पृथक मार्गों का वर्णन करते हैं। वे कह

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, महाभारत पुराण के भीष्म पर्व का यह उत्कृष्ट भाग श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का अथाह सागर है। यह शाश्वत संदेश वर्तमान समय में भी विश्व में प्रचलित सभी धार्मिक मान्यताओं का मूल आधार है। गीता में मुख्यतः परमपिता परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन संपूर्ण सृष्टि, समस्त जीवात्माओं तथा भौतिक देह की वास्तविक स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है। हरेक जीवात्मा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का परम लक्ष्य निर्धारित करते हुए गीताकार ने इस हेतु कर्म, ज्ञान, ध्यान एवं भक्ति रूपी चार प्रमुख मार्गों का सहज शब्दों में निरूपण किया है। गीता में विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक मार्ग की श्रेष्ठता को भी प्रतिपादित किया गया है, परंतु ऐसा साधक को भ्रमित करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा के विस्तृत स्वरूप के अनुसार इस ग्रंथ को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का निरंतर अध्ययन व चिंतन करने के पश्चात ये सभी मार्ग एक समान तथा एक दूसरे के पूरक ही प्रतीत होते हैं। भगवत प्राप्ति के इन सभी मार्गों की पराकाष्ठा है अनन्य भक्ति व अंततः शरणागति। श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, अर्थात प्रभु के नाम का संकीर्तन, श्रवण व स्मरण, प्रभु के समग्र स्वरूप की अर्चना, वंदना तथा चरण सेवा करना एवं प्रभु की दासता, मित्रता व शरण को स्वीकार करना ही भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। श्री मद्भगवद गीता रूपी इस गुह्यतम ज्ञान सागर के अगले अध्यायों के श्रवण से पहले आइए इस सनातन संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रेम भाव के साथ संकीर्तन करें।

¡Arriba!

जाना पाओ से अवतरित माता रेणुका की तपस्या का प्रतिफल आखिर क्या कारण है तुम्हारे यूं कहने का। विंध्याचल की बीच सागर से

मथुरा, गंभीर, सुगना, बनास, कालीसिंध, पार्वती जैसी पुण्य धाराओं का जल लेकर यमुना में समाहित होने का रहस्य क्या है? नदियों के चरित्र के विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर मालव के गले की यज्ञोपवीत बन जाने का मार्ग क्यों चुना तुमने चंबल? बोलो, जवाब दो।

कितनी शांति है यहाँ। कोई नहीं कह सकता कि यहीं पर हुआ था भीषण युद्ध।

0: कहानियां प्रचलित हैं।
1: पुराणों में जो उल्लेख आया है इसके बारे में, वो रंतीदेव से इसको जोड़ा गया है। रंतीदेव ने यज्ञ किया था और चर्म से निरंतर धरती सरिता से जो धारा प्रवाहित हुई उसको चर्मनवती कहा गया और कालांतर में उसका नाम चंबल हो गया।
0: आप हैं इतिहास वेत्ता श्री हेमंत त्यागी।
1: मल्लीनाथ ने जो कालिदास के काव्यों की टीका की है उसमें इसका उल्लेख किया है।
2: जमदग्नि महाराज की स्त्री धर्म पत्नी माता रेणुका भगवान शंकर जी की पूजन के लिए नर्मदा जी का जल लाती थी हमेशा। जब उसकी वृद्ध अवस्था आई उनसे आने जाने न बनने के ऊपर वो नर्मदा महाराज
0: बता रहे हैं बाबा जगदीश दास बैरागी जो जानापाऊ की पहाड़ी पर पंचमुखी हनुमान कुटी में साधनारत हैं।
2: नर्मदा महारानी से अर्ज विनती करती है कि महारानी हे मातेश्वरी मैं अब आ नहीं सकती और भोलेनाथ के लिए जल की मेरे को आवश्यकता है तो आप कृपा करके वहीं पधारें। तो मातेश्वरी फिर संभल के रूप में इस जानापाऊ पहाड़ के ऊपर नर्मदा जी आकर के विराजमान हुई संभल के नाम से।
0: लेकिन परशुराम ने जिस धारा में अपना परशु धोया था

0: संभल बताओ ना,
1: किसे खोज रहे हो तुम?
0: संभल को
1: कहो मैं हूँ संभल।
0: तुम संभल हो?
1: हाँ मैं ही संभल हूँ, यहाँ मैं इसी रूप में रहती हूँ।
0: लेकिन यहाँ तुम दिखाई क्यों नहीं देती?
1: बरसात के बाद मैं उधर मैदान में रहने चली जाती हूँ।
0: क्यों?
1: यहाँ क्या करूँ रहकर, जब यहाँ धनी वृक्ष थी तब मैं यही रहती थी साल भर।

0: मानव कल्याणी संबल का उद्गम यही है।
1: लेकिन कम से कम इतना किया जाना चाहिए कि जाना पाओ पर हम संबल के लिए कोई स्मृति स्तंभ या स्मृति चिन्ह वहां पर बनाए, उन लोगों को बताया कि यहाँ से संबल निकली।
0: पूर्व सांसद एवं कवि श्री बाल कवि बैरागी मनासा जिला मंदसौर।
1: कैसा लगेगा कि जिसने इतने मेगावाट बिजली पैदा कर दी उसके उद्गम स्थल पर हम एक बल्ब भी बिजली का नहीं लगा पाए।
0: कुंभ से उत्पन्न बिजली और नहरों के जाल से होने वाली सिंचाई में काया पलटती है बहुत बड़े क्षेत्र की। फिर भी विद्रोही और एकांत प्रिय कहा जाता है तुम्हें।
2: विद्रोही और एकांत प्रिय ही नहीं, मुझे अपवित्र भी कहा जाता है।
0: अपवित्र? ऐसा क्यों संभव?
2: शायद चर्म से वही धारा मानते हैं मुझे।
0: लेकिन कुमरी यज्ञ में तो पशु बलि नहीं दी जाती, राजा रंतिदेव में भी पशु बलि नहीं दी होगी।
2: शायद परशुराम के परशु से बहे रक्त के कारण।
0: किंतु बहती धारा को तो हमेशा निर्दोष माना गया है हमारी संस्कृति में। तो फिर क्या केवल दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के कारण ही तुम्हें लोक संस्कृति से अलग थलग कर दिया गया है?
2: ऐसा कुछ नहीं है।
0: उद्गम से संगम तक तुम्हारे किनारे केवल कोटा ही एक बड़ा शहर है। शहरों से इस तरह दूर रहने का क्या कारण है चंबल?
2: शहरों से अलग थलग रहकर ही तो मैं उस प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पाती हूँ जो मेरी सहायक नदियाँ लेकर आती हैं।

0: सभीरा के विकास की कहानी चंबल के आसपास ही घूमती है। उसके आसपास ताम्र युग के अवशेष काफी मात्रा में मिलते हैं। एक जमाने में चंबल को मालवा की सीमा रेखा माना जाता था। उत चंबल उत बेतवा मालव भीम सुजान, दक्षिण दिशी है नर्मदा यह पूरी पहचान।
1: चंबल जो अपनी यात्रा तय करती यात्रा में निकलती है वहां से इसके किनारे किनारे बहुत से ऐसे स्थान है जिसे अब बताऊं मैं आपको कि ओलिकर वंश का पहला शिलालेख जो प्रतापगढ़ के पास मिला है
0: श्री हेमेंद्र त्यागी,
1: तो वहां जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है सभाग्रह को और शिलालेख लगाया है वो अपरक यानी आवरा का ही रहने वाला था और ये आवरा मंदसौर जिले में ही स्थित है और चंबल के बिल्कुल किनारे पर।
2: इतिहास पुराण ही नहीं दुनिया से मानव संस्कृति के विकास की गवाह हूँ मैं।
0: राजा ययाति के राज्य की सीमा यही थी। विक्रमादित्य उदयन अशोक तोरमान मेहरकुल यशोधर्मन बाबर अकबर जैसे सारे महान विजेताओं के उत्थान और पतन की गवाही रही है चंबल। फिर मुगलों के बाद अंग्रेजी राज और अब आजादी में भी चंबल समय के परिवर्तन की बराबर की साक्षी रही है।
2: गलत कह रहे हो तुम।
0: लेकिन परशुराम के परशु से लेकर भिंड के डकैतों तक हर जगह तो तुम्हारे नाम के साथ विद्रोह का ही स्वर सुनाई देता है।
2: इंसान से इंसान की लड़ाई के तुम्हारे इतिहास से हमेशा मेरा विरोध रहा है।

0: बड़ी लड़ाई नहीं हुई तुम्हारे किनारे पर, वीरों ने चाहे अपने शस्त्र खोए हो तुम्हारे पानी में, बीघड़ों ने चाहे उन्हें शरण दी हो, मगर तुम्हारे पानी ने कभी आतताइयों को प्रश्रय नहीं दिया। शायद अपने इसी गुण के कारण जानापाव से मंदसौर जिले तक की तुम्हारी यात्रा महिमा मंडित नहीं की जा सकती।
1: चंबल पूरी जो इसकी लंबाई है चंबल की, उसमें केवल वही स्थल चंबल को यश देने वाला है कि जो स्थल मंदसौर जिले में से होकर के निकला है, क्योंकि यहाँ हमने छोटे बड़े इस पर राजस्थान तक 3-4 बांध छोटे बड़े बांधे हैं।
0: श्री बाल कवि बैरा जी,
1: भारत वर्ष के इतिहास में, विकास के इतिहास में केवल चंबल बांध ही वो बांध है कि जिसको बांधने के लिए उन लोगों ने भी चंदा दिया अपनी तरफ से कि जो लोग इसमें डूब गए।
0: जो विपरीत बहकर तुम्हें विरोध की प्रतीक ही कहलाना था।

0: खींच खींचती हो बंजर मरुभूमि को, क्यों बनाती हो इतनी बिजली? जवाब दोगी?
1: मैंने कहा ना, मैं राजाओं के इतिहास से नहीं, मानव मात्र के कल्याण से जुड़ी हूँ। गांधी सागर ही नहीं, एक के बाद एक चार बांधों से बंधना मुझे इसी कारण रास आया कि मुझे दिखाई दिया कि इसमें यहाँ के निवासियों का कल्याण है।
2: संसार की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है।
3: मनुष्य ने अपने हाथों से इतनी बड़ी झील संसार में कहीं नहीं बनाई।
4: चंबल नदी पर जो बांधों की संख्या बनी है उसमें सबसे पहले गांधी सागर बांध बना है और यही बांध प्रमुख है और सबसे बड़ा है।
0: श्री एमएन दुबे, कार्यपालन अभियंता सिंचाई, गांधी सागर जिला मंदसौर।
4: इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता 6.1 मिलियन घन फुट है और ये 204 फुट ऊंचा है और 1680 फीट लंबा है। इससे सिर्फ पानी ही संग्रह होता है, यहाँ से सीधी सिंचाई योजना नहीं है।
0: इस पानी का 3 तरह से उपयोग किया जाता है, बिजली उत्पादन, सिंचाई और मछली पालन।
3: यदि मैं आपकी जानकारी में ये बात लाऊं,
0: श्री बाल कवि बैरागी, मनासा जिला मंदसौर,
3: कि कलकत्ता के बाजार में जो कतला मछली खाई जाती है, बेची जाती है, वो चंबल के बांध की मछली है और वो सबसे ज्यादा कमाऊ मछली है, तो देश के लोग चौंकेंगे, किंतु ये सच है।
0: विशाल झील बनाने वाले बांध का आकार देखकर आश्चर्य होता है। चौड़े मैदान में बहती हुई चंबल यहाँ से एक अत्यंत सकरी घाटी में प्रवेश कर जाती है।
3: ये चंबल माता यहाँ नोरी के दल में से निकल गई है। 5-7 किलोमीटर तक का ऐसा हिस्सा है चंबल बांध के आसपास कि ऐसा लगता है कि नदी पूरे वेग के साथ में किसी नेवले के दिल में से गुजर रही है।
1: विंध्याचल का मैत्री संदेश अरावली तक पहुँचाने का यही तो एक रास्ता था, और अगर इस मार्ग से मैं नहीं गुजरती तो बताओ बांध बनाने की ये अनूठी जगह किसी काम आती?
0: बांध का ये अनूठा स्थान ढूंढा था आजादी से पूर्व होलकर राज्य के एक अधिकारी श्री दुबे ने, किंतु आजादी के बाद इस समूचे क्षेत्र के विकास के लिए 4 बांधों के निर्माण की योजना बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1954 में इसका शिलान्यास और 19 नवंबर 1960 को उन्होंने ही इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया।
5: इस नदी पर 3 पावर स्टेशन।
0: बी.एल. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, गांधी सागर बांध।
5: जवाहर सागर, तीनों पावर स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता 386 मेगावाट है। यहाँ से जो भी बिजली का उत्पादन होता है वह 50-50% के हिसाब से दोनों स्टेट को दी जाती है। यहाँ कोटा बराज से 2 नहरें निकली हैं, राइट मेन केनाल और लेफ्ट मेन केनाल। इनसे भी जो सिंचाई होती है वो 50% मध्य प्रदेश की भूमि और 50% राजस्थान की भूमि की सिंचाई होती है, और आज की तारीख में करीब 12 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है।
6: राजस्थान में तो चंबल इज द ओनली रिवर जिससे कि हम हाइडल जनरेशन कर सकते थे।
0: श्री आई जे पाल, कार्यपालन अभियंता, विद्युत मंडल, रावत भाटा, राजस्थान।
6: यहाँ फर्स्ट यूनिट आरपीएस पावर स्टेशन पे फरवरी 1968 में कमीशन हुई, सेकंड यूनिट जून 1968 में कमीशन हुई, थर्ड यूनिट दिसंबर 1968 में कमीशन हुई और फोर्थ यूनिट मई 1969 में कमीशन हुई,
0: और तीसरा बांध है जवाहर सागर।
1: 3-3 बांध बन गए और उनसे केवल बिजली ही बनाई गई। यहाँ के किसानों की जमीनों को सींचने के लिए मुझे एक बार और बनना पड़ा कोटा बराज में।
7: लेफ्ट मेन केनाल केवल राजस्थान के ही एरिया में लाभान्वित कर रही है, वो ज्यादातर कोटा की कुछ एरिया और बूंदी डिस्ट्रिक्ट।
0: श्री अजय अंकलेश्वरिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग, कोटा, राजस्थान।
7: केशवराय पाटन एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा विलेज है जिस एरिया में जाती है और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जाती है। कापरेन ब्रांच केनाल लाखेरी तक, लबान लाखेरी तक के एरियाज को सिंचित करती है। मेज नदी के पास तक की जो जमीन

0: होलियत होती हैं?
1: आश्चर्य भी होता है। विपरीत दिशा में बहने वाली एक साधारण सी नदी मानव के हाथों बंध कर इतनी समृद्धि दे सकती है।
0: आज से पहले जब तक चंबल की नहरें नहीं बनी थी, आसपास के गांवों में एक मकान भी पक्का नहीं था। आज सारे मकान आपको पक्के मिलेंगे। यहाँ काश्तकारों के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल

0: आज 90% काश्तकार के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, खुशहाली तो बहुत बड़ी है।
1: मेरे पानी की सफलता का ठीक ठीक पता तो किसानों से बात करने पर ही लग सकता है।
2: क्या नाम क्या आपका?
3: सरसेन सिंह।
2: क्या?
3: सरसेन सिंह।
2: अच्छा, ये कौन से गांव में बैठे हैं हम लोग?
3: गुडली रेलवे क्वार्टर।
2: अच्छा, ये कोटा से कितनी दूर है?
3: ये 18 किलोमीटर।
2: 18 किलोमीटर। अच्छा सर जी, ये बताइए कि कभी ये नहर का पानी नहीं होता यहाँ पे? अभी तो बहुत पानी है ना, संभल की कृपा है, खूब बढ़िया आपकी फसल दिख रही है। मान लो ये नहीं होता तो फिर आप कैसे खेती करते?
3: खेती क्या नहीं होती, खेती थोड़ी होती
2: है।
3: फिर तो खेती एक फसल ही होती।
2: अच्छा,
3: पहले एक ही तो होती थी, ज्वार व्यार ही होती थी।
2: क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। आप कहाँ खेती बाड़ी करते हैं?
4: हम यहीं रहते हैं, पास में बरखेड़ा गाँव है।
2: अरे आप क्या क्या मुख्य फसल क्या क्या लगाते हैं?
4: हमारे यही फसल है बस, गेहूँ है, चावल थे पहले।
2: चावल कौन सा लगाते हैं?
4: बासमती।
2: बासमती की खेती कर लेते हैं।
4: बासमती, बाकी दूसरा टेरिकॉट, सारी फसलें करते हैं।
2: आप बताइए थोड़ा सा कि चंबल आने से आपको क्या लगा यहाँ पे?
4: चंबल आने से हमारे तो
2: स्वर्ग, चंबल से स्वर्ग बनाया नहीं तो वैसे क्या था पहले? कुछ भी नहीं था।
5: चंबल से जो अपने यहाँ भिंड और मुरैना जो चंबल नहर प्रणाली है वो इसी चंबल।
6: श्री श्याम सिंह, उपायुक्त विकास।
5: ये जो क्षेत्र है चंबल संभाग का, ये पंजाब की श्रेणी में माना जाता है। जब से ये चंबल नहर प्रणाली लागू हुई है तब से ये बड़ा काफी संपन्न इलाका हो गया है, और विशेष रूप से तिलहन के क्षेत्र में। फसल की पद्धति ये है कि जिस समय ये चंबल नहर प्रणाली नहीं थी उस समय यहाँ केवल बाजरा होता था, और आज ये है कि यहाँ सरसों आपको लहराती हुई दिखाई दे रही है।
6: और विकास और समृद्धि लाती है कई समस्याएं।
0: राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में दोनों जगह जहाँ चंबल की नहरें निकली हैं वहाँ काश्तकारों को खुद अपने ढोरों की मेंटेनेंस अच्छी रखनी चाहिए।
6: श्री अभी अंकलेश्वरिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग कोटा राजस्थान।
0: खेत में काम में आना हो उसी में लगे, अभी ऐसा नहीं हो रहा। इसके अलावा जितना पानी की आवश्यकता हो उतना ही खेत में लगाना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा लगा रहे हैं। मतलब जितना पानी हमने बनाया और नहर में चलाते हैं जिससे फायदा हो सकता है, उससे कोई 50-60 गुना पानी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हमारे काश्तकारों को अभी तक उन्होंने वो सब तकनीकें नहीं अपनाई जो इम्प्रूव तकनीकें हैं जिनसे कम पानी में ज्यादा फसल हो सकती है।
7: पानी के वितरण की जो प्रणाली है वो बहुत ही दो।
6: दिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध डॉक्टर बीवी सिंह, जिन्होंने चंबल विकास एवं बिहड़ों पर शोध कार्य किया
7: है। प्रारंभ हो रही है डिस्ट्रीब्यूटरी प्रारंभ हो रही है, जिनके खेत उसके निकट आते हैं वो पानी को जबरदस्ती वहां से लेते हैं, और कहना चाहिए असंवैधानिक प्रयोग जल का जो है पूरे चंबल संभाग के अंदर बहुत ज्यादा है। तो लोगों को अभी इसके दुष्परिणामों के बारे में तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो भूखी और प्यासी जमीन थी और जब उसको जल मिला तो निसंदेह रूप से प्रोडक्शन जो है वो तो डेवलप हो गई।
1: शहर से नदी को सभ्यता नहीं केवल प्रदूषण ही मिलता है।
2: हाँ, ये सही है कि चंबल देश की अन्य नदियों की तरह से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी चंबल है।
0: किस तरह से?
2: एक तो चंबल के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनका गंदा पानी।
6: श्री रवि शर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क भिंड।
2: दूसरे गांधी सागर के आसपास जो राणा प्रताप एटॉमिक पावर प्लांट है वहाँ का पानी, उसकी वजह से यहाँ पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है।
8: देखिए, पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पोल्यूशन जो पानी एक दफ़े फैक्ट्री में जा करके बाहर निकलता है।
6: श्री के एस बूलिया, अधीक्षण अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास चंबल कोटा।
8: तो ये निश्चित सुनिश्चित किया जाता है कि वो बाहर निकलने वाला पानी जो नदियों में बहेगा उसमें किसी तरह का कोई मिश्रण न रहे और वो पब्लिक हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
6: मुरैना और भिंड जिलों के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में चंबल की दाहिनी नहर से सिंचाई होती है, लेकिन यहाँ भी कई समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है।
7: कुछ क्षेत्रों में चंबल का जल जो है वो इतना ऊपर आ चुका है, उन कुओं का जल जो है इतना ऊपर आ चुका है कि आपके खारेपन की स्वरूप जो है वो मिट्टी के अंदर साफ साफ दिखाई देने लगा है। जिस चंबल संभाग के जल की बहुत बड़ी प्रशंसा थी, लोग उसके जल को बड़ा पौष्टिक जल मानते थे, बड़ा शुद्ध जल मानते थे, अब जहाँ जहाँ कैनालाइजेशन है नियर अबाउट

0: सर रेडियस में आपका पानी जो है वो कुओं का खारी होता हुआ चला जा रहा है, और हो सकता है कि अगर इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो मिट्टी आपकी सॉइल तो एल्कलाइन सॉइल होनी है, वो रो एरिया हो जा रहा है, जैसे कि गोहद में है या उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे चौड़े एरिया में रो ही चला जाता है। सफेद मिट्टी मिट्टी आपको दिखाई देगी, वो चंबल के कैनाल, चंबल के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनके किनारे किनारे ये प्रॉब्लम विकसित हो गई है।
1: लेकिन चंबल के पानी से आज जो 7 लाख हेक्टेयर खेत दो दो और तीन तीन फसलें ले रहे हैं वो सूनी भी रह जाते यदि चंबल बहाना आई होती।
2: लेकिन अब भी मुझे इंतजार है इस देश के लाखों लाख लोगों की समृद्धि का, इसके लिए अब भी मुझ में काफी क्षमता है।
3: सबसे बड़ी योजना जो है वो प्रस्तावित धौलपुर ताप बिजली घर की है।
4: श्री एल एन यादव, कलेक्टर धौलपुर।
3: चंबल से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भेजी हुई है कि मंजूरी मिल जाती है तो हमारे यहाँ का जो असिंचित क्षेत्र है वो सिंचाई के अंदर आ सकेगा और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। तीसरे, चंबल से पर्यावरण के लिए भी हमें लाभ है। चंबल में कुछ ऐसे जल के प्राणी हैं जैसे घड़ियाल, डॉल्फिन, जिनसे न केवल इस क्षेत्र का नाम है बल्कि उनसे पर्यावरण में भी हमको लाभ मिलता है।
1: कोटा के बाद चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनकर बहती है। धौलपुर और मुरैना के बीच से बहती हुई ये नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है।
5: चंबल नदी हमारी मेनली चक्करनगर विकास खंड के थ्रू होती है, गुजरती है।
1: इटावा के मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक टंडन।
5: चक्करनगर विकास खंड हमारा इस क्षेत्र का सबसे बैकवर्ड, हम इसको विकास खंड कहेंगे। चंबल नदी और क्वारी नदी और यमुना नदी, तीन नदियों के कारण वहाँ पर काफ़ी, वहाँ पर बीहर का एरिया है, रेवेनस एरिया जिसे कहा जाता है, और इस रेवेनस एरिया के कारण खेती में काफ़ी अत्यधिक समस्या होती है वहाँ पर। इसके साथ साथ डेकोरेट की भी प्रॉब्लम है। इस एरिया में अधिक कार्य तभी हो सकता है जब यहाँ जो चंबल नदी का बीहर एरिया है उसको जब तक इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तब तक उसमें सुधार के लिए संभावनाएं काफ़ी कम है।
1: और एरिया के समीप पचनता में यमुना में विलीन होने से पहले का बीहड़ों से भरा क्षेत्र भी चंबल की दीर्घ यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ चंबल डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है।
2: डाकुओं की शरण स्थली चंबल नहीं, आसपास बने बीहड़ हैं।

0: DHCQ तीहरों से क्यों अपनी पहचान करवाती हो चंबल, बोलो जवाब दो।
1: दीहर मेरा नहीं, यहाँ की माटी का स्वभाव है।
2: ये दीहरों का दुर्भाग्य या चंबल का दुर्भाग्य कहिए कि वो दीहर के किनारे से बहती है।
3: श्री रवि शर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क भिंड।
2: बाकी चंबल और बीहड़ का कोई आपसी सहसंबंध नहीं है।
4: दूसरा एक और है चंबल के बीहड़ में कि आपकी जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, आपका यमुना, आपकी क्वारी, चंबल और दो और हैं, जहाँ आप उस पंचनद पर देखेंगे कि ये नदी जो है जब एक दूसरे से मिल रही तो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर मिल रही।
3: डॉक्टर बी वी सिंह, जिन्होंने चंबल विकास एवं बीहड़ों पर शोध कार्य किया है।
4: चंबल जो है वो नीचा है, उससे आने वाली रिवर जो है वो कैसी है, थोड़ी अपर लेवल को लिए हुए, तो उसका पानी जो है वो क्या करेगी, जब वो पानी बाहर जब आती है रेंज के अंदर, तो पानी जब फ्लो होता है तो वो पानी को क्या करते हैं, एक तरह का डैम बना देते हैं, और चंबल का पानी जो है वो क्या करता है, रिसीड करता है, और जब वो रिसीड करता है तो रिसीड करने में परिणाम से वो आप जाएंगे कि वो चारों तरफ को बैक करेगा, और बैक करने के बाद चारों तरफ को फैलेगा और कटाव प्रारंभ होगा।
1: मानव को डकैत मैंने नहीं बनाया, मेरे आसपास की बीहड़ भूमि को जब तुम सुधार कर सींच लोगे, जब आसपास हर तरफ खुशहाली होगी, तब किसी को बागी या डाकू होने की जरूरत नहीं होगी।
0: सच है, नदी का पानी

0: डाकू नहीं बनाता, डाकू तो बनते हैं गरीबी से, असंतोष से।
1: मैं तो अभी भी समझाना चाहती हूँ मानव को, अगर मेरे पानी का ठीक उपयोग करोगे तो और भी कई लाख एकड़ क्षेत्र को समृद्ध बना सकोगे, और अगर ऐसे ही नादानों की तरह व्यवहार करते रहे तो मेरा ही पानी इस सिंचित भूमि को मरुभूमि में बदलने में देर नहीं करेगा। मेरी इस चेतावनी को याद रखना।
0: इतना लाभ देने के बाद भी चंबल की चेतावनियां ध्यान देने के लायक है।
1: मैंने कहा था ना, अभी भी मुझ में काफी संभावनाएं हैं। अगर आज का मानव मेरी धारा को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके तो इससे कई गुना समृद्धि दे सकती हूँ मैं।
0: निश्चय ही आज के भारत की समृद्धि में तुम्हारे विद्रोह का, विपरीत बहाव का बड़ा हाथ है। हे चंबल, सच विद्रोह की सार्थकता उसकी रचनात्मक परिणति में ही है। जाना पाव से पचनता तक, उद्गम से संगम तक तुम्हारी ये नैनाभिराम यात्रा मानव को देती है संदेश यही। मानव की देश की सुख समृद्धि के लिए अर्पित बहाव ही जीवन को सार्थकता देता है, और इस मायने में आज तुम सा सार्थक, तुम सा सफल,

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि परम पिता ब्रह्मा के आदेश से प्रजापति दक्ष ने देवी वीरुणी से विवाह किया। इन दोनों के दैहिक संबंध द्वारा सृष्टि में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर ब्रह्मा जी के ही आदेश पर दक्षराज ने 3000 वर्ष तक मां शिवा की आराधना की। मां शिवा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वो दक्ष पुत्री सती के रूप में अवतार लेंगी। देवी सती के बड़े होने पर ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों ने रुद्र रूपी शिव से अनुरोध किया कि वे देवी सती को अपनी अर्धांगिनी बना लें। जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए महादेव उनकी बात मान गए, परंतु एक बार अपने कथन पर संदेह करने के कारण उन्होंने देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: विप्रवर सूत जी

0: सती वियोग का ये प्रसंग तो बहुत दुखदाई था।
1: महाभाग शौनक जी, दुख की पराकाष्ठा होना तो अभी शेष थी।
0: पराकाष्ठा? सूत जी, आप ही ने तो बताया था कि इस घटना के बाद भी रुद्रदेव तथा सती ने वैवाहिक धर्म का निर्वाह किया।
1: ये सत्य है। दीर्घ काल तक कैलाश पर निवास करते हुए वे दोनों जग कल्याण के कार्य करते रहे।
0: तो फिर आप दुख की किस पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ?
1: देवी सती के आत्मदाह की।
0: क्या, देवी सती ने आत्मदाह कर लिया? परंतु क्यों?
1: कथा विचित्र होने के साथ साथ लंबी भी है। एक बार गंध्यमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया के साथ विहार कर रही थी।
2: इन उत्तुंग पर्वत शिखरों को छूकर आते पवन के ये झोंके देह को ही नहीं आत्मा तक को विभोर कर रहे हैं।
3: हाँ देवी सती, कैलाश का वातावरण ही कुछ ऐसा है। यहाँ की मन मन बयार का स्पर्श पाते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है।
2: सखी विजया, ये विशाल गगन चुंबी वृक्ष इस बयार में देखो कैसे झूम रहे हैं। ऐसा लगता है पक्षी भी आनंदित हो रहे हैं।
3: अरे, लगता है अपने प्रिय से विलग हो ये पपी ही उसे ढूंढते फिर रही है।
2: मानसिक रूप से विलग तो मैं भी हो गई हूँ अपने प्रियतम से।
3: हाँ, आपने कुछ कहा देवी सती?

0: मान कैसे हो उठे सखी? चंद्रदेव और रोहिणी इस रात्रि काल में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं देवी, जा शीघ्रता से जाकर पूछ कर तो आ। अभी आई सखी। चंद्रदेव, चंद्रदेव, चंद्रदेव, तनिक रुकिए तो। चंद्रदेव,
1: कहो विजया, क्या बात है?
0: देवी सती की जिज्ञासा है कि आप शीघ्रता से देवी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं?
1: क्या दक्ष पुत्री को नहीं ज्ञात कि उनके पिता दक्ष कल से महायज्ञ करने जा रहे हैं? मैं और रोहिणी उन्हीं के आमंत्रण पर वहाँ जा रहे हैं, और रोहिणी विलंब हो रहा है।
0: देवी, देवी, महादेवी, दक्षराज ने एक महायज्ञ आयोजित किया है, चंद्रदेव और देवी रोहिणी उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
2: क्या? पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इसकी सूचना तक नहीं भेजी? अवश्य ही कहीं किसी ने त्रुटि कर डाली है। चलो महेश्वर से पूछती हूँ। विजया आओ सखी, चलो
0: आइए आइए देवी।
2: ओ, स्वामी तो नेत्र बंद किए ध्यान मग्न है।
3: बारे सते
2: जी, देवाधिदेव,
3: इतनी उद्विग्न क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या संशय है?
2: देवाधिदेव, मेरे पिता कल से एक महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं।
3: हमें ज्ञात है देवी।
2: आपको ज्ञात है तो इसकी सूचना आपने मुझे क्यों नहीं दी? क्या मानसिक विलगाव के कारण मैं इतनी तुच्छ हो गई हूँ?
3: सत्य, मन में ऐसी शंका मत लाओ। देवी, हमें उस यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
2: देव, दक्षराज मेरे पिता और आपके श्वसुर हैं। क्या इतना ही उनके यज्ञ में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है? अवश्य ही कहीं किसी से कुछ भूल हो गई है।
3: परंतु देवी सत्य, अनामंत्रित किसी के घर जाने से केवल अनादर ही मिलता है, और यह अनादर मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है।
2: तो फिर बताएं प्रभु, मैं क्या करूं?
3: उपयुक्त तो यही होगा भारत कि हम वहां ना जाएं।
2: परंतु क्यों? क्यों मेरे पिता ने आपको, देवाधिदेव को निमंत्रण नहीं भेजा? इसके पीछे उनका अभिप्राय क्या है? ये जाने बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।
3: तो तुम क्या चाहती हो सते?
2: जब तक मैं आपके इस अनादर का कारण नहीं जान लेती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पति की अनुमति की आवश्यकता होती है। मुझे अनुमति दे महाप्रभु।
3: ठीक है देवी सती, यदि यही तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं।
4: वृषभराज नंदी।
5: आज्ञा महाप्रभु।
4: आपको महादेवी के साथ दक्ष यज्ञ में जाना है, आप इनका वाहन बने।
5: मेरे अहोभाग्य परमेश्वर,
4: देवी सती का कुशल और इनकी रक्षा का दायित्व आपका होगा।
5: आज्ञा का पालन होगा देव।
4: और देवी सती
2: जी प्राणनाथ,
4: आप एक महारानी की भांति सुसज्जित होकर दक्ष यज्ञ में जाएंगी। मेरे 60 सहस्त्रगण आपकी यात्रा में सम्मिलित होंगे।
2: जैसी आपकी इच्छा प्राणेश्वर।
6: महाज्ञानी शौनक जी, रुद्र आज्ञा से देवी सती ने दक्ष की यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान किया। रुद्रगण प्रसन्नता से रुद्रदेव का जय जयकार करते जा रहे थे।
7: कितना आनंदमय वातावरण रहा होगा।
6: दक्षराज ने यज्ञ स्थल की ओर आने वाले हर मार्ग पर धर्मशालाएं बनवाई थी। यहां दक्ष के सेवक यज्ञ यात्रियों की सेवा में तत्पर रहते थे।
8: अरे महर्षि दधीच, आपके आगमन से ये धर्मशाला और हम सब धन्य हुए। विराजी महर्षि।
9: प्रणाम ऋषिवर।
10: प्रणाम मुनिवर।
8: मैं अभी आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ।
9: तो आप दोनों भी दक्ष यज्ञ में आमंत्रित हैं।
8: कौन आमंत्रित नहीं है मुनिश्रेष्ठ, ऐसा प्रतीत होता है मानो

0: संपूर्ण सृष्टि ही उमड़ पड़ी हो।
1: ब्राह्मण समुदाय को तो विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
0: हाँ, उचित भी है, ब्राह्मण ही तो यजमान को यज्ञ फल दिलवाते हैं।
1: और हाँ, ये भी सुना है कि भृगु को ऋत्विज बनाया गया है, वे ही संपूर्ण यज्ञ कार्य संपन्न कराएंगे।
2: जिस यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हो, स्वयं ब्रह्मा जी वेदत्रय की विधि बताने वाले हों, वहाँ ऋषि भृगु का ऋत्विज बनाया जाना सर्वथा उपयुक्त है।
0: देवराज इंद्र सहित सभी देवगण, लोकपालगण और सभी उपदेवता यज्ञ में भाग लेने आ रहे हैं।
2: अरे, पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, लगता है भोर हो रही है, हम सबको यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
1: जैसी आज्ञा मुनिवर जी।
2: आइए आइए, चलिए
0: लीजिए, हम यज्ञ द्वार तक आ पहुँचे।
3: प्रणाम महर्षि दधीची।
4: प्रणाम मुनिजनो।
2: प्रणाम देखपाल। तो आपको दक्षराज ने द्वारपाल और यज्ञ रक्षक बनाया है।
0: जी मुनि श्रेष्ठ, हमें अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य भी सौंपा गया है। आइए, मैं आपको यज्ञशाला की ओर लिए चलता हूँ।
2: चलिए।
0: कितने विशाल और सुंदर भवन है चारों ओर। अधिपति दक्ष के विशेष आदेश पर स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। यहीं अतिथिगण अपने परिवारों सहित विश्राम करते हैं। अरे वो देखिए, महर्षि दधीचि, देव ऋषि नारद एवं सप्त ऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे हैं।
1: मैं तो यहाँ के वातावरण से रोमांचित हुआ जा रहा हूँ।
0: आइए आइए ऋषिवर दधीचि, यज्ञ मंडप में प्रवेश कीजिए।
2: जी।

0: प्रणाम महर्षि दधीचि, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हुआ।
1: आयुष्मान भव।
2: प्रणाम श्री हरि। प्रणाम विधाता।
1: प्रणाम मुनिवर।
0: क्या हुआ मुनिवर, आप चारों ओर क्या देख रहे हैं? क्या कहीं कुछ त्रुटि रह गई है?
2: दक्षराज, मुझे परमपिता और भगवान मधुसूदन तो सपत्नीक दिखाई दे रहे हैं, परंतु रुद्रदेव और देवी सती नहीं दिखाई दे रहे, ना ही उनके आसनों की व्यवस्था दिखाई दे रही। क्या कारण है दक्षराज?
1: उत्तर दो पुत्र दक्ष।
0: मैंने रुद्र को आमंत्रित नहीं किया है।
2: क्या दक्षराज, आपने यज्ञात्मा को ही आमंत्रित नहीं किया और यज्ञ कर रहे हैं? आपने परमेश्वर को आमंत्रित क्यों नहीं किया दक्षराज?
3: और यही प्रश्न करने मैं रुद्र पत्नी सती स्वयं यहाँ आई हूँ।
0: अरे देव,
4: रुद्र पत्नी सती
0: और इस विशाल संख्या में रुद्रगण,
5: क्या होने वाला है?
4: लक्षण अच्छे नहीं है। देवी सती तो बहुत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं।
5: अरे उनके साथ आए नंदीश्वर तथा शिवगणों के नेत्र भी लाल हो रहे हैं।
4: ये तो बहुत अमंगल सूचक है।
3: उत्तर दीजिए पिताजी।
0: मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ, परंतु पुत्री तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। धर्म प्रतिष्ठित भगवान विष्णु, परमपिता ब्रह्मा, समस्त देवता, महर्षि दधीचि जैसे निष्पाप ऋषिगण यहाँ उपस्थित हैं। जो भी मेरे इस यज्ञ में भाग लेने योग्य है उसे आमंत्रित किया गया है।
6: दक्ष, तुम किस आधार पर रुद्रदेव को अयोग्य घोषित कर रहे हो?
0: विष्णु हरि, वे कुलीन नहीं हैं, उनके न माता हैं न पिता, वे कपाली हैं।
3: परंतु मैं किस आधार पर अयोग्य हो गई?
0: तुम उस कुरूप भूत प्रेतों पिशाचों के स्वामी उस कपाली रुद्र की पत्नी हो।
3: जो भी हो पिताजी, वो मेरे पति हैं, आपके जमाता हैं। समाज में जमाता अति सम्माननीय होता है, उसकी चरण रज मस्तक को लगाई जाती है, उसका स्थान

0: पुत्र से भी उच्च होता है।
1: मैंने रुद्र को कभी जामाता के रूप में स्वीकार नहीं किया।
0: पिताजी, यदि आपके हृदय में रुद्रदेव के प्रति इतना दुराग्रह था तो आपने उनसे मेरा विवाह ही क्यों किया?
1: ऐसा मैंने परमपिता का आदेश पालन करते हुए किया।
2: दक्ष, मत भूलो, हमारे आदेश भी परमेश्वर की ही लीला होते हैं।
1: परमेश्वर की इसी लीला के कारण मेरे सहस्रों पुत्र मुझसे बिछुड़ गए, नष्ट हो गए। मैं प्रजा सृष्टि का उत्तरदायित्व ना निभा पाया।
0: पिताजी, प्रभु की ये लीला तो आपको स्मरण रही, और उन्हीं की दूसरी लीला आप भूल गए।
1: कौन सी दूसरी लीला?
0: पिताश्री, प्रभु के आशीर्वाद से ही आपको 60 दिव्य पुत्रियां प्राप्त हुई थी। उनकी संतान परंपराओं से ही तीनों लोक भरे पड़े हैं। पुत्रों के माध्यम से ना सही, पुत्रियों के माध्यम से तो प्रजा आपको प्राप्त हुई थी ना?
3: हाँ, ये तो है।
4: देवी सती का कथन सत्य है।
1: अरे दक्षराज को तो उत्तर ही नहीं सूझ रहा। सती, तुम्हारा पति उदंड और दुरात्मा भी है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, अभिमानी है, किसी का आदर नहीं करता। स्मरण करो सती, प्रयागराज में होने वाला वो यज्ञ, परमपिता श्री हरि और अपने पति के साथ तुम भी उस यज्ञ में उपस्थित थी। मुझे संपूर्ण सृष्टि का अधिपति बनाया गया था। वहां सभी ने मेरा अभिनंदन आदर सत्कार किया, परंतु
5: प्रणाम पितामह।
2: तुम्हारा कल्याण हो पुत्र दक्ष।
5: जगदीश, मेरा नमन स्वीकार करें।
6: तेजस्वी भव, आसन ग्रहण करो पुत्र।
5: जी विष्णुदेवा।
2: पुत्र दक्ष, ये क्या धृष्टता कर रहे हो? त्रिलोक स्वामी परमेश्वर को प्रणाम किए बिना ही आसन कैसे ग्रहण कर लिया?
5: धृष्टता मैं नहीं परमपिता, ये भभूतधारी कर रहा है। सभी देवताओं, ब्रह्मर्षियों, ब्राह्मणों ने मेरे आने पर स्वयं उठकर मुझे सम्मान दिया, परंतु प्रेतों, पिशाचों से घिरा ये अघोरी बैठा रहा, मुझे प्रणाम तक नहीं किया।
4: दक्षराज, ये क्या कह रहे हैं?
7: रुद्रदेव का अपमान कर रहे हैं।
4: परंतु देखो तो, रुद्रदेव कैसे शांत बैठे बैठे मन मन मुस्कुरा रहे हैं।
6: दक्ष, प्रजापतियों के भी प्रजापति बनने का इतना अभिमान मत करो। ब्रह्मा पुत्र को ऐसा अहंकार शोभा नहीं देता।
5: श्रीहरि, शास्त्रीय विधि की अवहेलना करना, नीति मार्ग को कलंकित करना और सदा स्त्री में ही आसक्त रहना, क्या इसे शोभा देता है? मैं श्राप देता हूं, चारों वर्णों से पृथक ये कुरूप रुद्र यज्ञ अनुष्ठानों से बहिष्कृत हो जाए, ये देवताओं के बीच बैठने के योग्य न रहे।
8: अरे षठ निर्लज्ज दक्ष, तूने स्वयं परमेश्वर को श्राप देने का दुस्साहस किया। मैं नंदी तुझे और तेरा साथ दे रहे समस्त ब्राह्मणों को इसी रुद्र तेज से श्राप देता हूं, तुम सब वेद ज्ञान से शून्य हो जाओ, भोगी बन जाओ, क्रोध मोह लोभ में फंसकर भिक्षा मांगते फिरो तुम।
9: शांत हो जाओ नंदी, शांत। हे नंदी, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, मैं ही यज्ञ फल हूं, मैं ही यज्ञ की आत्मा हूं, तो भला मुझे किसी का श्राप कैसे छू सकता है? महामते नंदी, देवी सती।
0: आज्ञा देव।
9: आइए, कैलाश लौटने का समय हो गया है।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
1: उस दिन रुद्र मेरा तिरस्कार और उपहास करके चले गए, परंतु मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। रुद्र को अपने यज्ञ में आमंत्रित ना कर आज ये ज्वाला शांत हुई है।
10: तो रुद्रदेव की अनुपस्थिति का मुख्य कारण ये है। मूर्ख दक्ष, तेरे अहंकार, अभिमान और दुराग्रह ने तुझसे ये क्या करवा डाला, और तू किस ज्वाला के शांत होने की बात कर रहा है। मुझे भय है कहीं यही ज्वाला तुझे भस्म ना कर डाले, तेरा ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा।
5: किसी एक के ना आने से यह सफल नहीं होगा मुनि दधीची।
0: पिताजी, क्या आप रुद्रदेव को सामान्य देवता समझते हैं? जो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे सिद्ध हो सकता है?
10: देवी सती का कथन सत्य है। पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ के संपर्क मात्र से अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाता है। उनका इस यज्ञ में आना अत्यंत आवश्यक है। परमपिता ब्रह्मा, विष्णु भगवान, आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी हो रुद्रदेव को यहां आमंत्रित किया जाए।
3: क्षमा करें मुनि दधीची, मेरा एक निवेदन है।
10: कहिए ऋषि श्रेष्ठ भृगु, आप तो इस यज्ञ के ऋत्विज हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
3: किसी अनुष्ठान में किसे आमंत्रित करना है किसे नहीं, ये अनुष्ठान के यजमान का अधिकार है। यज्ञ कैसे संपन्न करना है इसकी भी स्वतंत्रता यजमान को होती है। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने को विवश करना धर्माचरण के विरुद्ध है, इससे यज्ञ भाव की हानि होती है।
10: वो किस प्रकार मुनि भृगु?
3: यज्ञ अनुष्ठान किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, ये तो आप भी मानते हैं महर्षि।
10: मानता हूँ मुनिवर।
3: उस फल की प्राप्ति के लिए यजमान अपने इच्छानुरूप विधि विधान से यज्ञ करवाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आने से यजमान यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल या अफल से वंचित हो जाता है, यज्ञ विफल हो जाता है।
10: आपकी बात का वास्तविक तात्पर्य क्या है मुनि भृगु?
3: आप मेरे यजमान दक्ष के यज्ञ में बाधा ना डालें, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का आदेश ना दें।
10: अरे भृगु, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप और यहां उपस्थित आप समान अन्य ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गए। दक्ष के धन वैभव और आपकी पद लोलुपता ने आप सबको इस अधर्मी का चाटुकार बना दिया है। यज्ञ के विधि विधान बदल देना चाहते हैं आप? ब्राह्मणत्व की परिभाषा बदल देना चाहते हैं? तक्षराज,
5: कहिए महर्षि दधीची।
10: यज्ञात्मा रुद्र की उपस्थिति के बिना तुम्हारा यह यज्ञ अयज्ञ हो गया है।
5: क्या?
10: जहां धर्म का नाश हुआ हो, ब्राह्मण कुल को कलंकित किया गया हो और देवाधिदेव का अपमान किया गया हो, वहां वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अरे अधम दक्ष, तेरे प्रणाम करने पर मैंने व्यर्थ ही तुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे डाला। सत्य तो ये है दक्ष कि आज इस यज्ञ में तेरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तेरा। मुनिगणों आओ, ये यज्ञ पवित्र हो गया है।
5: देवेश, देवताओं, देवर्षियों, ये उचित ही हुआ कि क्रोधी मंदबुद्धि और मिथ्यावादी ब्राह्मण इस यज्ञ से बाहर चले गए। अब आप सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं।
0: अरे मेरे पति की निंदा करने और सुनने वालों, जब तक चंद्र और सूर्य हैं, तुम नरक में पड़े रहोगे। हे ऋषियों और मुनियों, तुम में धर्माचरण नहीं रह गया है, तुम्हारे मन मैले हो गए हैं। अपने स्वामी का अनादर अब मुझसे देखा सुना नहीं जाता। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं इस दक्षराज के शरीर से पैदा हुई हूँ। हे नाथ, पिता के इस कुकृत्य के कारण मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं रही हूँ। मैं अभी अपने इस शव तुल्य घृणित शरीर को त्याग दूंगी। हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें।
7: अरे देवी सती तो ध्यान लगाकर यही धरती पर बैठ गई हैं।
11: अरे उनके नाभि क्षेत्र से ये कैसी योगाग्नि उत्पन्न हुई है?
7: इस योगाग्नि ने तो देवी को संपूर्ण रूप से घेर लिया।

0: अरे उनका शरीर जलकर भस्म हो गया है।
1: देखो देवी का शरीर जलकर भस्म हो गया। अरे
2: देवी सती माते, ये क्या कर डाला आपने? मैं देवाधिदेव के समक्ष कैसे जा पाऊंगा? आपके कुशल और आपकी रक्षा का भार उन्होंने मुझे सौंपा था। धिक्कार है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है हम सब शिवगणों को। शिवगणों, देख क्या रहे हो? देवी सती के इन हत्यारों का नाश कर डालो।
3: उन्होंने सभी द्वारपालों को ध्वस्त कर दिया है।
0: अरे उधर देखो उधर, रक्षक पंक्तियों को जल के समान काटते हुए वे यज्ञ मंडप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
4: श्रीराज भृगु, शिवगणों ने तो चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। मेरे सभी रक्षक योद्धा अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हे ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए।
3: मैं अभी दक्षिणाग्नि में यजुर्वेद से आहुति डाल ऋभुओं को उत्पन्न करता हूँ। अपहता असुरः रक्षांसि वेदि सदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदि सदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदि सदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदि सदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदि सदा।
5: ऋषि भृगु ने तो आहुति द्वारा सहस्त्रों बलशाली देवता उत्पन्न कर डाले।
0: ये ऋभु तो शिवगणों से भीषण युद्ध कर रहे हैं।
5: अरे अरे देखो देखो तो शिवगण परास्त हो भाग खड़े हुए हैं।
0: हाँ, वो देखो वो भाग रहे हैं।
5: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे वो भाग गए।
6: सावधान, यहां बचे ऋषियों, मुनियों, देवताओं, नागों, आप सब तुरंत ये यज्ञ मंडप छोड़ दें, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है।
7: और महामुनि शौनक जी, देखते ही देखते दक्षराज का यज्ञ मंडप लगभग रिक्त हो गया।
8: दक्षराज ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार उच्च पदवी व्यक्ति को मति भ्रष्ट कर सकती है। उस व्यक्ति को धर्म अधर्म, सत्कर्म कुकर्म के भेद का ज्ञान ही नहीं रहता। फिर क्या हुआ महामहिम सूत जी?
7: शौनक जी, रुद्रदेव को सती दाह का समाचार मिलना, उनका रौद्र रूप धारण कर लेना तथा दक्ष विनाश के लिए वीरभद्र और महाकाली को भेजने का प्रसंग अगली बैठक में सुनाऊंगा।
8: जैसा आप उचित समझे महाभाग।
6: श्रोताओं, शिव लीला का आज का प्रसंग शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड से लिया गया था। इसमें 26वें से 31वें अध्याय तक को सम्मिलित किया गया था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आपके दुनिया भयल सनात। हमसे ज्यादा आपके हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरिउ जो चाहसि उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहेऊं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि हैं जिन्ह कहें विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की इन सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनिदर पहु मुनि सिद्ध सुरेश।

0: तुम्हें लागी धरी हूं नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा, हरि हूं सकल भूमि करु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
1: श्रोताओं, चलिए अयोध्या नगरी, रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्रचित ध्यानलीन होकर इसी स्थान पर बैठे रहे।
1: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
2: क्यों राजन?
1: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
1: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
2: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
1: लेकिन कौशल्या,
2: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा कि ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोल ये राजन, प्रगति अग्नि चरु कर ली ने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवन, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असी अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आ गया।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दे।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद

0: महंगो महंगो बरु भय नब पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
1: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुन
0: जो फसुन दि मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
1: आहा, क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही।
2: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे, आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फल स्वरूप।
1: वरदान? ओह, हमने कहा एक लालसा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
0: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाई।
1: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव।
2: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
0: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मा तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे।
2: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे, हाँ बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
3: यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे, गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने कहो, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाता। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
3: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूं विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हूं भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाही, राम देत नहीं मन ही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
5: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं। इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधि देई आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप

0: दीजिए।
1: आपका कहना ठीक है। राम लक्ष्मण आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो, पर

0: सकता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो, आओ।
1: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें, चलिए।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहन कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी। अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी सयानी, सी ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आए काली, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगु, अवसी देख अहीं देखन जोगु। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलोकति सकल दिसि, जाने से सुन रिगी सभी।
2: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
3: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
2: क्या,
3: कंकन किन किने नूपुर धुने,
2: तात
3: मानह मदन दुंदुभि तीनहि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनहि।
2: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित तजे दिगंचल।
3: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूछन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
2: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात,
3: जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
2: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
3: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
2: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
3: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
2: स्वाभाविक ही है तात।
3: वह बात नहीं, सुनो, रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरे ही नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे ही सपने हु पर नारी न हेरी।
2: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
3: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ। वह आदर्श जिनका लहे ही न रिपुर अन पीठी, नहीं

0: पावहीं पर तियमन उड़ी थी।
1: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से ही चुने।
2: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो बो रहे हैं दोनों। श्यामल गौर किशोर सुहाए।
3: सखी क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं? कौन सच की बात है?
2: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई।
3: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
2: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न ले हूँ।
3: सकुचो मत राजकुमारी,
2: नयन उधर कर देखो ना।
5: सन्मुख आमने सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियों मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
2: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
4: चित्त तो ठीक है ना?
2: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी
2: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
2: सखियों राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चल।

मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजि ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानते रावरु।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का

झुझरी है झुझरी है झुझरी है झुझरी है झुझरी है झुझरी है झुझरी है।

नाव मझधार में आने। आधी उठत प्रचंड, आधी उठता

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।